0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आमोरिस लेतित्सिय संगोष्ठी के समापन मिस्सा में कार्डिनल तागले द्वारा संत पापा का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा के प्रतिनिधि कार्डिनल अंतोनियो तागले ने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की 10वीं सालगिरह के अवसर पर वैटिकन में आयोजित धर्माधीक्षकों की विशेष संगोष्ठी के समापन का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। कार्डिनल मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनियो तागले ने संत पापा लियो 14वें की ओर से पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान की अगुवाई करते हुए उनके प्रवचन को प्रस्तुत किया। परिवारों में प्रेम के आनंद की अनुभूति कलीसिया का भी आनंद है। अपने इन वचनों के द्वारा 10 साल पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की शुरुआत की थी। आज इस यूखारिस्तीय बलिदान के अनुष्ठान में हम ईश्वर को इस दस्तावेज द्वारा मिले फलों के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं और हम ईश्वर से याचना करते हैं कि हम इसके समृद्धियों को अपने हृदयों में वहन कर सकें तथा उन्हें अपनी प्रेरिताई में लागू कर सकें। प्रथम पाठ में हम प्रेम के संगीत को पाते हैं। आमोरिस लेतित्से का 4वां अध्याय हमारे लिए इसी पद की चर्चा करता और हमें ख्रिस्तीय विवाह के गुणों पर चिंतन करने का आह्वान करता है। एक मिलन जो आध्यात्मिक और बलिदान के रूप में प्रभावकारी है, जो ईश्वरीय प्रेम की निशानी है। उन गुणों को जीने के द्वारा और कृपा की मदद से दंपत्ति प्रतिदिन अपने को त्रित्वमय ईश्वर के चिन्हों में विकसित करते हैं। दोनों दंपत्ति विशेष रूप से अपनी परिपक्वता को प्राप्त करते और पूरी जिंदगी को मिलकर जीने और उसे आकार देने के पक्के संकल्प में एक दूसरे के जीवन को परिलक्षित करते हैं। इस भांति सच्चे प्रेम का आनंद धीरे धीरे एक गहरे मिलन में बदलता है, जिसमें हर व्यक्ति की अद्वितीयता एक दूसरे की उपस्थिति और अपने को देने में निखरती है। संत पौलुस उस समुदाय को संबोधित करते हैं जो समृद्ध उपहारों और आदर्शों से भरा था, यद्यपि उन्हें प्रेम में परिपक्व होने की जरूरत थी। उन्होंने कुरिन्थ समुदाय को याद दिलाया, प्रेम के बिना व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अपने में खन खानाती या झुनझुनाती घड़ियाल की भांति है। अपने विचारों में संत पापा लियो ने कहा कि हम उस तरह जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। आज का स्तोत्र भी हमें ईश्वर के निष्ठामय प्रेम में सदैव बने रहने का आह्वान देता है, जिसकी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वे वह ईश्वर हैं जो हमें बिना रोक टोक प्रेम करते हैं, जो हमें खोजना कभी नहीं छोड़ते हैं। वे हमारे ऊपर विश्वास करते और हमारे संग अपनी मित्रता को नवीन करते हैं। यह वह प्रेम है जिसे आमोरिस लेतित्से हमें परिवारों की नींव बनाने हेतु निमंत्रण देता है। यह वह सच्चा प्रेम है जिसे विशेष रूप में हमें उन युवाओं को बतलाना है जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं। हमें उन्हें इन गुणों की महत्ता के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है, जिसमें शुद्धता का एक विशेष स्थान है जो दो लोगों के बीच सच्चे प्रेम में बढ़ने हेतु मूल्यवान है। विवाह की तैयारी हेतु पल्लियों में आयोजित कार्यक्रम अपने में सराहनीय हैं, फिर भी वे कार्यक्रम अपने में काफी नहीं है। उनमें प्रेम की शिक्षा देने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति को बचपन से ही विकसित होने में मदद करता है। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराया है, किसी में प्रेम करना स्वतः ही नहीं होता है, ना ही हम इसे एक सेमिनार में विवाह के पूर्व सिखा सकते हैं। वे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, हर दंपत्ति के लिए विवाह की तैयारी जन्म से शुरू होती है और हर चीज जिसे एक युवा अपने परिवार के अंदर अनुभव करता है उसे एक व्यक्ति के रूप में एक पूर्ण और निश्चित समर्पण के योग्य बनाता है। इस भांति प्रेम जिसे हम परिवार के अंदर जीते हैं, अपने संघर्ष, गलतियों और असफलताओं के क्षणों में अपनी अप्रत्याशित चमत्कार, हर दिन के जीवन में प्रेम के आनंद, मानवीय स्नेह की प्रथम पाठशाला पहली मूल्यवान और बेजोड़ सीख बनती है। यही कारण है कि हमें बहुत सारे परिवारों का सहयोग और प्रयासों को पहचान प्रदान करने की जरूरत है, जो रोज दिन अपनी प्रेरिताई और बुलाहट को बिना किसी धूमधाम के यद्यपि वीरतापूर्ण निष्ठा में जीते हैं। वे हमारे लिए एक उदारतापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे हमने यीशु ख्रिस्त के वचनों में सुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। माता पिता, बच्चों, नाना नानियों, युवाओं और बुजुर्गों के साक्ष्य द्वारा सुसमाचार का सच्चा संदेश और जीवन की परिपूर्णता विश्व में प्रसारित होती है। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें यीशु के सरल और स्पष्ट निर्देश, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में दिया, प्रस्तुत करते हैं। यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। हम इसका अभ्यास अपने जीवन में करें जिससे हम ईश्वर की कलीसिया स्वरूप, परिवारों के परिवार स्वरूप विकास कर सकें, जहां सेवा का आदान प्रदान सबों की भलाई होती है। इस भांति युवा दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन के शुरू में प्रोत्साहन का अनुभव करेंगे। माता पिता को सहायता की अनुभूति होगी क्योंकि वे अपने संतानों की परवरिश और परिवार के संचालन में चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बुजुर्गों को अपनी भूमिका के लिए मूल्यवान होने की अनुभूति होगी क्योंकि शारीरिक कमजोरियों के बावजूद वे अपने अनुभवों और गुणों को साझा करते हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति में वे जो अधिक क्षणभंगुर हैं या कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, वे भी अपने में सहायता और प्रोत्साहन को पाएंगे। हम इस बात को याद करें कि चाहे परिवार कितना भी घायल क्यों ना हो, वे प्रेम में सदैव एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के लिए खुलापन और उसका सम्मान गर्भ से लेकर मृत्यु तक, हम इसे करुणा में जड़ित पाते हैं जो मानव के रूप में हमारे जीवन के अस्तित्व का मूलभूत आधार है। परिवार इन मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक और मानवता की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी ऐसा मिलन जो अस्थायी हो या जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद ना करता हो, समाज के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता है। बच्चों को ईश्वर का उपहार मानने वाले और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान देने वाले मजबूत परिवारों के बिना दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। संत पापा ने यीशु के निमंत्रण में एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, पिता से मेरे नाम में मांगने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा। ये वाक्य हमें इस बात की याद दिलाती है कि परिवार प्रार्थना का एक मुख्य स्थल है। दुख की बात है कि विश्व के विभिन्न स्थानों में गिरावट आई है। आमोरिस लेतिट से हमें याद दिलाता है कि हमें परिवारों में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता, प्रार्थना और रविवारीय यूखरिस्त में सहभागिता पर ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक प्रार्थना और संस्कार पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में वे हमारे पोषण और चंगाई की ठोस दवाइयां समान हैं। इसलिए मैं सभी से दृढ़तापूर्वक अपील करता हूं कि हम इन तौर तरीकों को फिर से अपनाएं और उन्हें बढ़ावा दें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि पोप लियो 14वें की रोम के जेमेली अस्पताल में पहली रात शांति से बीती, जहां उनका फेफड़े का ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुआ। प्रेस कार्यालय ने बुधवार को कहा, पोप के लिए रात शांति से बीती, आज बाद में और जानकारी दी जाएगी। पोप लियो 14वें की सर्जरी जेमेली अस्पताल में हुई है। मंगलवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सर्जनों ने पोप के दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा निकाल दिया। बयान में कहा गया, पूरी तरह निकालने के लिए दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा वीडियो असिस्टेंट तकनीक का इस्तेमाल करके निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान जांचे गए उत्तक के पहले किए गए टेस्ट से संदेह के अनुसार निदान की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के दौरान की गई उत्तक जांच ने फेफड़ों के कैंसर के निदान की पुष्टि की, जैसा कि ऑपरेशन से पहले के जांचों से संदेह था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट चला। डॉक्टरों ने कहा कि यह सफल रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। बयान के अनुसार पोप लियो सर्जरी के बाद सामान्य तरीके से चेतना में आए और थोड़ी देर निगरानी में रहने के बाद अस्पताल की 10वीं मंजिल पर अपने कमरे में आए। वैटिकन प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता मत्ते ब्रूनी के अनुसार ऑपरेशन के बाद पोप लियो ने शाम का भोजन लेने की इच्छा जाहिर की और शाम अपने सचिव एवं दूसरे वैटिकन स्टाफ के साथ बिताई। आने वाले दिनों में निकाले गए उत्तक पर ऑपरेशन की बात की जाँच की जाएगी। ऑपरेशन से पहले के टेस्ट में डॉक्टरों को पहले ही पता चल गया था कि कहां और कैसे ऑपरेशन करना है। बताया गया है कि पोप 1 हफ्ता तक अस्पताल में रहेंगे और इस बीच संत पापा के लिए पूरे विश्व से प्रार्थना की जा रही है। भारत के कार्तिक धर्मध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने पूरे देश के महाधर्मध्यक्षों, धर्मध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, प्रभु संत पिता को चंगा करें, शांति दें और उन्हें विश्वव्यापी कलीसिया की देखभाल करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी एक साथ की गई प्रार्थनाएं संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के लिए हमारा पुत्र तुलियस ने कलीसिया के साथ सहभागिता और आध्यात्मिक सामीप्य की सच्ची अभिव्यक्ति हो। पोप लियो 14वें ने 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती होने से पहले परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को एक संदेश भेजा और सभी लोगों एवं संस्थाओं से शांति को बचाने और बढ़ावा देने हेतु अपना सहयोग देने की अपील की। पोप ने संदेश में लिखा, शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है और साथ ही यह एक ऐसा मिशन है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में धैर्यपूर्वक पूरा करना होगा। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को वैटिकन जॉन पॉल प्रथम फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल पियत्रो परोलिन को एक संदेश भेजा। यह संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित जॉन पॉल प्रथम यूस्टिसिया एट पैक्स इस परेशान दुनिया में शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को दिया गया। पोप ने सम्मेलन के आयोजकों, वक्ताओं और उनके प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में हो रही इस मीटिंग के अच्छे परिणामों के लिए बधाई दी। पोप ने कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु मानवता के भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है, जिसका ध्यान हर एक व्यक्ति के लिए शांति बनाने की जिम्मेदारी पर है। पोप फ्रांसिस का जिक्र करते हुए जिन्होंने जोर दिया था कि शांति सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है। पोप लियो ने आगे कहा कि संत अगस्टीन शांति को प्रशांति और व्यवस्था का फल बताते हैं। यह दोहराते हुए कि शांति के लिए हर इंसान की प्रतिष्ठा और बुनियादी अधिकारों का सम्मान साथ ही लोगों के बीच एकजुटता जरूरी है। पोप लियो ने जोर देकर कहा, इस दृष्टिकोण से न्याय एक जरूरी शर्त बन जाता है। जॉन पॉल प्रथम की सीख हमें पक्की शांति पाने के लिए आमंत्रित करती है। पोप ने आगे याद दिलाया कि धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम ने अपनी आसान एवं सरल भाषा में भरोसे पर आधारित मानवीय रिश्ते बनाने में व्यक्तिगत सहभागिता, भाईचारा और उदारता की आवश्यकता पर जोर दिया था। पोप लियो ने कहा कि यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति परिवार, स्कूल एवं समुदाय में शुरू होती है
और फिर संस्थाओं तक पहुंचती है। इस दृष्टिकोण से पोप ने कहा कि जॉन पॉल प्रथम की शिक्षा आज भी फिर से विचार किया जाना चाहिए और इसे शांति को एक आमूर्त विचार न मानने का बुलावा बताया, जिसे सिर्फ उन लोगों को सौंपा नहीं गया है जिन पर देशों के बीच स्थिरता और सामाजिक मेल जोल पक्का करने की बड़ी जिम्मेदारी है। संत पापा ने जोर देकर कहा, बुरी तरह हिली हुई दुनिया में शांति को बचाने और बढ़ावा देने का मतलब है जो विभाजित है उसे ठीक करना, सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करना, माफ करना और समझना, दूसरों की बात सुनना एवं उन्हें पहचानना, लोगों को सच्ची बातचीत के लिए प्रेरित करना तथा भाईचारा शब्द को पुनः एक बार ठोस कलीसियाई सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू देना। पोप लियो ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि चिंतन का यह दिन पोप जॉन पॉल प्रथम के प्रेरित कार्य एवं धर्म शिक्षा की समझ को गहरा करने का एक अच्छा अवसर साबित हो। पोप ने अंत में सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कस्तेल गंदोल्फो के लाउदातो सी विलेज में विलानोवा यूनिवर्सिटी से पोप लियो 14वें की स्थिरता पदक प्राप्त की और मानवता से अपील की कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीरता से काम करें। कार्डिनल चर्नी ने पदक प्राप्त करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर को, आप सभी को और मेरे माता पिता को धन्यवाद, जिनके प्रकृति के प्रति प्रेम एवं पुनः चक्रण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने मुझ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, और उन सभी का शुक्रिया जो गरीबों और धरती की पुकार सुनते हैं। 13 अक्टूबर की शाम को विलानोवा यूनिवर्सिटी ने कस्तेल गंदोल्फो के परम धम्म पीठे विल्ला में लाउदातो सी गांव में हुए एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक से सम्मानित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता पदक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे 2026 में विलानोवा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। यह उन लोगों को पहचान देता है जो पर्यावरण की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, सबसे कमजोर लोगों की देखभाल और संसाधनों की भली भांति देखभाल करने में नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आमोरिस लेतित्सिय संगोष्ठी के समापन मिस्सा में कार्डिनल तागले द्वारा संत पापा का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा के प्रतिनिधि कार्डिनल अंतोनियो तागले ने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की 10वीं सालगिरह के अवसर पर वैटिकन में आयोजित धर्माधीक्षकों की विशेष संगोष्ठी के समापन का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। कार्डिनल मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनियो तागले ने संत पापा लियो 14वें की ओर से पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान की अगुवाई करते हुए उनके प्रवचन को प्रस्तुत किया। परिवारों में प्रेम के आनंद की अनुभूति कलीसिया का भी आनंद है। अपने इन वचनों के द्वारा 10 साल पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की शुरुआत की थी। आज इस यूखारिस्तीय बलिदान के अनुष्ठान में हम ईश्वर को इस दस्तावेज द्वारा मिले फलों के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं और हम ईश्वर से याचना करते हैं कि हम इसके समृद्धियों को अपने हृदयों में वहन कर सकें तथा उन्हें अपनी प्रेरिताई में लागू कर सकें। प्रथम पाठ में हम प्रेम के संगीत को पाते हैं। आमोरिस लेतित्से का 4वां अध्याय हमारे लिए इसी पद की चर्चा करता और हमें ख्रिस्तीय विवाह के गुणों पर चिंतन करने का आह्वान करता है। एक मिलन जो आध्यात्मिक और बलिदान के रूप में प्रभावकारी है, जो ईश्वरीय प्रेम की निशानी है। उन गुणों को जीने के द्वारा और कृपा की मदद से दंपत्ति प्रतिदिन अपने को त्रित्वमय ईश्वर के चिन्हों में विकसित करते हैं। दोनों दंपत्ति विशेष रूप से अपनी परिपक्वता को प्राप्त करते और पूरी जिंदगी को मिलकर जीने और उसे आकार देने के पक्के संकल्प में एक दूसरे के जीवन को परिलक्षित करते हैं। इस भांति सच्चे प्रेम का आनंद धीरे धीरे एक गहरे मिलन में बदलता है, जिसमें हर व्यक्ति की अद्वितीयता एक दूसरे की उपस्थिति और अपने को देने में निखरती है। संत पौलुस उस समुदाय को संबोधित करते हैं जो समृद्ध उपहारों और आदर्शों से भरा था। यद्यपि उन्हें प्रेम में परिपक्व होने की जरूरत थी, उन्होंने कुरिन्थ समुदाय को याद दिलाया, प्रेम के बिना व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अपने में खन खानाती या झुनझुनाती घड़ियाल की भांति है। अपने विचारों में संत पापा लियो ने कहा कि हम उस तरह जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। आज का स्तोत्र भी हमें ईश्वर के निष्ठामय प्रेम में सदैव बने रहने का आह्वान देता है, जिसकी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वे वह ईश्वर हैं जो हमें बिना रोक टोक प्रेम करते हैं, जो हमें खोजना कभी नहीं छोड़ते हैं। वे हमारे ऊपर विश्वास करते और हमारे संग अपनी मित्रता को नवीन करते हैं। यह वह प्रेम है जिसे आमोरिस लेतित्से हमें परिवारों की नींव बनाने हेतु निमंत्रण देता है। यह वह सच्चा प्रेम है जिसे विशेष रूप में हमें उन युवाओं को बतलाना है जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं। हमें उन्हें इन गुणों की महत्ता के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है, जिसमें शुद्धता का एक विशेष स्थान है जो दो लोगों के बीच सच्चे प्रेम में बढ़ने हेतु मूल्यवान है। विवाह की तैयारी हेतु पल्लियों में आयोजित कार्यक्रम अपने में सराहनीय हैं, फिर भी वे कार्यक्रम अपने में काफी नहीं है। उनमें प्रेम की शिक्षा देने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति को बचपन से ही विकसित होने में मदद करता है। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराया है, किसी में प्रेम करना स्वतः ही नहीं होता है, ना ही हम इसे एक सेमिनार में विवाह के पूर्व सिखा सकते हैं। वे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, हर दंपत्ति के लिए विवाह की तैयारी जन्म से शुरू होती है और हर चीज जिसे एक युवा अपने परिवार के अंदर अनुभव करता है उसे एक व्यक्ति के रूप में एक पूर्ण और निश्चित समर्पण के योग्य बनाता है। इस भांति प्रेम जिसे हम परिवार के अंदर जीते हैं, अपने संघर्ष, गलतियों और असफलताओं के क्षणों में अपनी अप्रत्याशित चमत्कार, हर दिन के जीवन में प्रेम के आनंद, मानवीय स्नेह की प्रथम पाठशाला पहली मूल्यवान और बेजोड़ सीख बनती है। यही कारण है कि हमें बहुत सारे परिवारों का सहयोग और प्रयासों को पहचान प्रदान करने की जरूरत है, जो रोज दिन अपनी प्रेरिताई और बुलाहट को बिना किसी धूमधाम के यद्यपि वीरतापूर्ण निष्ठा में जीते हैं। वे हमारे लिए एक उदारतापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे हमने यीशु ख्रिस्त के वचनों में सुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। माता पिता, बच्चों, नाना नानियों, युवाओं और बुजुर्गों के साक्ष्य द्वारा सुसमाचार का सच्चा संदेश और जीवन की परिपूर्णता विश्व में प्रसारित होती है। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें यीशु के सरल और स्पष्ट निर्देश, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में दिया, प्रस्तुत करते हैं। यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। हम इसका अभ्यास अपने जीवन में करें, जिससे हम ईश्वर की कलिसिया स्वरूप, परिवारों के परिवार स्वरूप विकास कर सकें, जहां सेवा का आदान प्रदान सबों की भलाई होती है। इस भांति युवा दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन के शुरू में प्रोत्साहन का अनुभव करेंगे। माता पिता को सहायता की अनुभूति होगी, क्योंकि वे अपने संतानों की परवरिश और परिवार के संचालन में चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बुजुर्गों को अपनी भूमिका के लिए मूल्यवान होने की अनुभूति होगी, क्योंकि शारीरिक कमजोरियों के बावजूद वे अपने अनुभवों और गुणों को साझा करते हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति में वे जो अधिक क्षणभंगुर हैं या कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, वे भी अपने में सहायता और प्रोत्साहन को पाएंगे। हम इस बात को याद करें कि चाहे परिवार कितना भी घायल क्यों ना हो, वे प्रेम में सदैव एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के लिए खुलापन और उसका सम्मान गर्भ से लेकर मृत्यु तक, हम इसे करुणा में जड़ित पाते हैं, जो मानव के रूप में हमारे जीवन के अस्तित्व का मूलभूत आधार है। परिवार इन मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक और मानवता की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी ऐसा मिलन जो अस्थायी हो या जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद ना करता हो, समाज के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता है। बच्चों को ईश्वर का उपहार मानने वाले और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान देने वाले मजबूत परिवारों के बिना दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। संत पापा ने यीशु के निमंत्रण में एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, पिता से मेरे नाम में मांगने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा। ये वाक्य हमें इस बात की याद दिलाती है कि परिवार प्रार्थना का एक मुख्य स्थल है। दुख की बात है कि विश्व के विभिन्न स्थानों में गिरावट आई है। आमोरिस लेतित से हमें याद दिलाता है कि हमें परिवारों में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता, प्रार्थना और रविवारीय यूखरिस्त में सहभागिता पर ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक प्रार्थना और संस्कार पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में वे हमारे पोषण और चंगाई की ठोस दवाइयां समान हैं। इसलिए मैं सभी से दृढ़ता पूर्वक अपील करता हूं कि हम इन तौर तरीकों को फिर से अपनाएं और उन्हें बढ़ावा दें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि पोप लियो 14वें की रोम के जेमेली अस्पताल में पहली रात शांति से बीती, जहां उनका फेफड़े का ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुआ। प्रेस कार्यालय ने बुधवार को कहा, पोप के लिए रात शांति से बीती, आज बाद में और जानकारी दी जाएगी। पोप लियो 14वें की सर्जरी जेमेली अस्पताल में हुई है। मंगलवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सर्जनों ने पोप के दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा निकाल दिया। बयान में कहा गया, पूरी तरह निकालने के लिए दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा वीडियो असिस्टेंट तकनीक का इस्तेमाल करके निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान जांचे गए उत्तक के पहले किए गए टेस्ट से संदेह के अनुसार निदान की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के दौरान की गई उत्तक जांच ने फेफड़ों के कैंसर के निदान की पुष्टि की, जैसा कि ऑपरेशन से पहले के जांचों से संदेह था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट चला। डॉक्टरों ने कहा कि यह सफल रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। बयान के अनुसार पोप लियो सर्जरी के बाद सामान्य तरीके से चेतना में आए और थोड़ी देर निगरानी में रहने के बाद अस्पताल की 10वीं मंजिल पर अपने कमरे में आए। वैटिकन प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता मत्तेव ब्रूनी के अनुसार ऑपरेशन के बाद पोप लियो ने शाम का भोजन लेने की इच्छा जाहिर की और शाम अपने सचिव एवं दूसरे वैटिकन स्टाफ के साथ बिताई। आने वाले दिनों में निकाले गए उत्तक पर ऑपरेशन की बात की जाँच की जाएगी। ऑपरेशन से पहले के टेस्ट में डॉक्टरों को पहले ही पता चल गया था कि कहां और कैसे ऑपरेशन करना है। बताया गया है कि पोप 1 हफ्ता तक अस्पताल में रहेंगे और इस बीच संत पापा के लिए पूरे विश्व से प्रार्थना की जा रही है। भारत के कार्तिक धर्मध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने पूरे देश के महाधर्मध्यक्षों, धर्मध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्मसंघियों, प्रचारकों और लोकधर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, प्रभु संत पिता को चंगा करें, शांति दें और उन्हें विश्वव्यापी कलीसिया की देखभाल करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी एक साथ की गई प्रार्थनाएं संत पेतरस के उत्तराधिकारी के लिए हमारा पुत्र तुलियस ने कलीसिया के साथ सहभागिता और आध्यात्मिक सामीप्य की सच्ची अभिव्यक्ति हो। पोप लियो 14वें ने 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती होने से पहले परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को एक संदेश भेजा और सभी लोगों एवं संस्थाओं से शांति को बचाने और बढ़ावा देने हेतु अपना सहयोग देने की अपील की। पोप ने संदेश में लिखा, शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है और साथ ही यह एक ऐसा मिशन है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में धैर्यपूर्वक पूरा करना होगा। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को वैटिकन जॉन पॉल प्रथम फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल पियत्र परोलिन को एक संदेश भेजा। यह संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित जॉन पॉल प्रथम यूस्तिसिया एट पैक्स इस परेशान दुनिया में शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को दिया गया। पोप ने सम्मेलन के आयोजकों, वक्ताओं और उनके प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में हो रही इस मीटिंग के अच्छे परिणामों के लिए बधाई दी। पोप ने कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु मानवता के भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है, जिसका ध्यान हर एक व्यक्ति के लिए शांति बनाने की जिम्मेदारी पर है। पोप फ्रांसिस का जिक्र करते हुए जिन्होंने जोर दिया था कि शांति सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है। पोप लियो ने आगे कहा कि संत अगस्टीन शांति को प्रशांति और व्यवस्था का फल बताते हैं, यह दोहराते हुए कि शांति के लिए हर इंसान की प्रतिष्ठा और बुनियादी अधिकारों का सम्मान साथ ही लोगों के बीच एकजुटता जरूरी है। पोप लियो ने जोर देकर कहा, इस दृष्टिकोण से न्याय एक जरूरी शर्त बन जाता है। जॉन पॉल प्रथम की सीख हमें पक्की शांति पाने के लिए आमंत्रित करती है। पोप ने आगे याद दिलाया कि धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम ने अपनी आसान एवं सरल भाषा में भरोसे पर आधारित मानवीय रिश्ते बनाने में व्यक्तिगत सहभागिता, भाईचारा और उदारता की आवश्यकता पर जोर दिया था। पोप लियो ने कहा कि यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति परिवार, स्कूल एवं समुदाय में शुरू होती है
और फिर संस्थाओं तक पहुंचती है। इस दृष्टिकोण से पोप ने कहा कि जॉन पॉल प्रथम की शिक्षा आज भी फिर से विचार किया जाना चाहिए और इसे शांति को एक आमूर्त विचार न मानने का बुलावा बताया, जिसे सिर्फ उन लोगों को सौंपा नहीं गया है जिन पर देशों के बीच स्थिरता और सामाजिक मेल जोल पक्का करने की बड़ी जिम्मेदारी है। संत पापा ने जोर देकर कहा, बुरी तरह हिली हुई दुनिया में शांति को बचाने और बढ़ावा देने का मतलब है जो विभाजित है उसे ठीक करना, सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करना, माफ करना और समझना, दूसरों की बात सुनना एवं उन्हें पहचानना, लोगों को सच्ची बातचीत के लिए प्रेरित करना तथा भाईचारा शब्द को पुनः एक बार ठोस कलीसियाई सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू देना। पोप लियो ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि चिंतन का यह दिन पोप जॉन पॉल प्रथम के प्रेरित कार्य एवं धर्म शिक्षा की समझ को गहरा करने का एक अच्छा अवसर साबित हो। पोप ने अंत में सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कस्तेल गंदोल्फो के लाउदातो सी विलेज में विलानोवा यूनिवर्सिटी से पोप लियो 14वें की स्थिरता पदक प्राप्त की और मानवता से अपील की कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीरता से काम करें। कार्डिनल चर्नी ने पदक प्राप्त करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर को, आप सभी को और मेरे माता पिता को धन्यवाद, जिनके प्रकृति के प्रति प्रेम एवं पुनः चक्रण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने मुझ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, और उन सभी का शुक्रिया जो गरीबों और धरती की पुकार सुनते हैं। 13 अक्टूबर की शाम को विलानोवा यूनिवर्सिटी ने कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे विल्ला में लाउदातो सी गांव में हुए एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक से सम्मानित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता पदक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे 2026 में विलानोवा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। यह उन लोगों को पहचान देता है जो पर्यावरण की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, सबसे कमजोर लोगों की देखभाल और संसाधनों की भली भांति देखभाल करने में नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: से चीरों अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: नाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना

0: और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम दो पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखता है। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है। जब शरीर को संभालने वाले हाथ बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं और चबाना मुश्किल हो जाता है, खिड़कियां यानी कि आंखें धुंधली हो जाती हैं, कान कमजोर पड़ जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है आदि आदि। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है, वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। इस तथ्य पर भी हमने गौर किया था कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ नहीं कहता। फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सही नतीजे पर पहुंचता है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमा करते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होता है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और कहीं भी इतने अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और इस प्रकार यह उस भयानक भविष्य पर स्पष्ट रोशनी डालने का रास्ता खोलता है जो ख्रिस्ती सुसमाचार के खुलासे से मिलती है। फिर उक्त पदों में जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद करें। वस्तुतः चांदी और सोने की तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी, और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के अंतिम भाग यानी कि उपसंहार पर दृष्टिपात करें। उपसंहार इस ग्रंथ के 12वें अध्याय का ही एक प्रकार से विस्तार है। उपदेशक द्वारा यह जीवन का अंतिम विश्लेषण है। उपसंहार के पहले पद में ही उपदेशक अपनी शुरुआती बात पर लौट आता है और कहता है कि अनंत काल और अनंत परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ व्यर्थ है। जीवन की निरर्थकता को परखने के बाद वह कहता है कि जीवन न केवल निरर्थक है बल्कि निरर्थकता की पराकाष्ठा है। सब कुछ असार है, सब कुछ निस्सार है और थोता घमंड है। आइए मिलकर उपसंहार का पाठ करें। उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के 8 से लेकर 14 तक के पद इस प्रकार हैं। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक न केवल बुद्धिमान था बल्कि उसने जनता को प्रज्ञा की शिक्षा भी दी थी। उसने सोचने और परखने के बाद बहुत सी सूक्तियों का संकलन किया था। उसने सुंदर सूक्तियों को खोज निकाला था जिनका सही अर्थ यहां लिपिबद्ध किया गया है। ये शब्द प्रामाणिक है। फिर उपसंहार के 11 से लेकर 14 तक के पदों में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान के शब्द अंकुश जैसे हैं, उसकी सूक्तियों का संग्रह मजबूती से ठोकी गई कीलों जैसा है। ये सब एक ही चरवाहे की देन है। पुत्र सावधान रहो, उनमें कुछ नहीं जोड़ो। अनेक ग्रंथों के निर्माण का अंत नहीं होता और अधिक अध्ययन करने से शरीर थक जाता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। श्रोताओ, यहूदियों के नरसंहार से बचे विक्टर फ्रैंकल ने जीवन के अर्थ और बिना अर्थ के जिए गए जीवन की कीमत पर गहराई से विचार किया था। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में युद्ध के दौरान उनके अनुभवों और जीवन के बारे में उनकी समझ का जिक्र है। वे लिखते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद खोजने की कोशिश ही इंसान के भीतर सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। फ्रैंकल कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे होने का मकसद हम खुद नहीं बनाते बल्कि उसे खोजते हैं। वे कहते हैं, मैं अब उस भावना के नुकसानदेह असर की बात करता हूं जिसकी शिकायत आज बहुत से मरीज करते हैं, यानी अपनी जिंदगी के पूरी तरह और आखिरकार बेमतलब होने की भावना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जिंदगी में कोई ऐसा मकसद भी हो सकता है जिसके लिए जिया जाए। वे अपने अंदर के खालीपन के एहसास से परेशान रहते हैं। यह अस्तित्व का खालीपन, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं, मुख्य रूप से ऊब या बोरियत की हालत में दिखाई देता है। श्रोताओ, फ्रैंकल ईसाई नहीं थे और उनका यह विश्वास बिल्कुल नहीं था कि जिंदगी का एक ही मकसद हो सकता है। उनका मानना था कि हर इंसान का अपना मकसद होता है और यह पल पल बदल भी सकता है। उनके अनुसार जिंदगी का मकसद यानी कि उपदेश या लक्ष्य तीन तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, कोई काम करके, दूसरा, किसी मूल्य को अनुभव करके, और तीसरा, दुख सहकर। श्रोताओ, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का उपसंहार यह दर्शाता है कि उपदेशक भली भांति समझ गया था कि ईश्वर के सत्य का प्रचार कैसे किया जाए, एक उपदेशक में कौन से गुण होने चाहिए, इसी का इन पदों में विश्लेषण है। और वह यह कि उपदेशक सत्य को अपने तक सीमित न रखे बल्कि उसका प्रचार प्रसार करे, और इसके लिए सही और स्वीकार्य शब्द खोजने की कोशिश अनिवार्य है। उपदेशक को अपने शब्दों को पैने अंकुश और मजबूती से ठोकी गई कीलों जैसा बनाना चाहिए, जिनमें सही दिशा और उपदेश हो।
उसे एक ही चरवाहे के सदृश ईश्वर के शब्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसे यह भी समझना चाहिए कि अच्छी तरह अध्ययन करने से शरीर थक जाता है और उसे वह कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि पोप लियो चौदहवें की रोम के जेमेली अस्पताल में दूसरी रात अच्छी रही और उन्होंने उठकर नाश्ता किया। पोप लियो चौदहवें की मंगलवार दोपहर को जेमेली अस्पताल में सर्जरी हुई थी, जिसके दौरान डॉक्टरों ने उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को हटा दिया, जैसा कि उसे शाम वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया था। ऑपरेशन के दौरान किए गए उत्तक की जांच से फेफड़े के कैंसर के निदान की पुष्टि हुई, जो पहले से किए गए परीक्षणों से संदिग्ध था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट तक चला और सब कुछ योजना अनुसार हुआ। 14 अक्टूबर की दोपहर को डॉक्टर लुइजी कार्बोन और जेमेली अस्पताल में थोरैसिक सर्जरी के प्रमुख प्रोफेसर स्टेफानो मार्गरेटोरा, जिन्होंने मेडिकल टीम के साथ ऑपरेशन किया था, पोप लियो चौदहवें के ऑपरेशन के बाद के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आज सुबह पोप ने सर्जरी के बाद तय ब्लड टेस्ट एवं चेस्ट का एक्सरे कराया। नतीजों से पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद उनके स्वास्थ्य में सामान्य सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, पोप की श्वसन फिजियोथेरापी हुई है और उन्होंने अपने कमरे में घूमना शुरू कर दिया है। वे सामान्य खाना ले रहे हैं और नाश्ता एवं दोपहर का भोजन किया। उनके स्वास्थ्य में सुधार उम्मीद के मुताबिक हो रही है। बाद में वैटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पत्रकारों को बताया कि संत पापा ने बुधवार दोपहर जेमेली अस्पताल की 10वीं मंजिल पर उनके लिए खास रूप से तैयार किए गए एक कमरे में पौत्र मिसा में भाग लिया। अमोरिस लेतित्सा के प्रकाशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सभा के समापन पर पोप लियो चौदहवें ने कहा कि वे उनके कामों के परिणाम का अवलोकन करेंगे और उम्मीद जताई कि परिवार स्थानीय कलीसियाओं के जीवन और मिशन में हमेशा सक्रिय भाग लेंगे। पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतित्सा के प्रकाशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सभा के समापन के लिए अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन दिनों आपके बीच नहीं आ पाया। मैं आपकी प्रार्थनाओं और आपके साथ मिलकर किए गए कामों के लिए सहृदय शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके अनुभव को साझा करना और ध्यान पूर्वक सुनना सचमुच पूरी कलीसिया के लिए एक वरदान है। बुधवार सुबह कार्डिनल लुइस अंतोनो ताकले ने 7 से 14 अक्टूबर की सभा के समापन के लिए पोप लियो चौदहवें की ओर से क्रिस्तिया की अध्यक्षता की। कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल लुइस अंतोनो ताकले ने संत पापा के संदेश को प्रस्तुत किया। पोप ने अपने संदेश में उन परिवारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी खुशियों, मुश्किलों और उम्मीदों के बारे में बताया और पूर्वी कार्तिक कलीसिया के प्रमुखों एवं कैथोलिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों को तैयारी और सभा के लिए दिए गए उनके समय के लिए धन्यवाद दिया। पोप ने सभा के प्रतिभागियों को आश्वासन देते हुए कहा, मैं आपके काम और बातचीत के नतीजों का अवलोकन करूंगा और सही समय पर अपने विचार पेश करूंगा। उन्होंने कहा, इस बीच मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप अपने धर्मदक्ष सम्मेलन और धर्म प्रांत के साथ इससे बांटना शुरू करें कि आपने क्या अनुभव किया और क्या पाया है और अमोरिस लेतित्सा की समृद्धि का इस्तेमाल करते हुए परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार करते रहें। पोप ने उम्मीद जताते हुए कहा, परिवार हमेशा अपने स्थानीय कलीसिया के जीवन एवं मिशन में हमेशा भाग लेते रहेंगे और वे आपको आगे के रास्ते समझने में मदद करेंगे। पोप ने सभा में भाग लेने वाले सभी लोगों को सलाह दी कि जब वे घर लौटें तो अपने समुदायों में सभी को पोप का आध्यात्मिक सामीप्य एवं प्रोत्साहन दें। पोप लियो ने अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देते हुए कहा, आप में से हर एक को नाजरेत के पौत्र परिवार की सुरक्षा में सौंपते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें जैसे मैं आपके लिए करता हूँ। कलीसिया ने अमोरिस लेतित्सा सभा के अंत में परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वैटिकन ने पोप लियो चौदहवें द्वारा प्रेरित प्रबोधन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुलाई गई कलीसियाई सभा अमोरिस लेतित्सा के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार के समापन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग 14 अक्टूबर को समाप्त हुई। इस मीटिंग में कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुख, विवाहित दंपति और विशेषज्ञ एक साथ आए ताकि इस बात पर सोच विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों के साथ बेहतर तरीके से कैसे रह सकती है।
महाधव मदर्श सिख लूना ने इस अनुभव के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे अगले दिन माल्टा लौटेंगे और वे इतने सारे धर्मदक्ष भाइयों, साथी परिवारों और लोक धर्मियों को सुनने के इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया जो इस मीटिंग के हिस्से थे। उन्होंने मीटिंग बुलाने के लिए पोप लियो को भी धन्यवाद दिया। माल्टा के महाधर्मदक्ष ने कहा, मैं इस सभा से जो लेकर जा रहा हूँ वह है कलीसिया के प्रेरितिक मिशन के केंद्र में परिवार को रखने का एक नया संकल्प। 10 साल पहले प्रकाशित प्रेरितिक प्रबोधन पर चिंतन करते हुए महाधर्मदक्ष सिख लूना ने कहा कि अमोरिस लेतित्सिया ने प्रेरितिक बदलाव का निमंत्रण दिया है, परिवारों का न्याय करने से पहले उनकी बात सुनने और खुले हृदय से हालात को समझने का दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि इसने ईश्वर की इच्छा जानने के साथ साथ ईश्वर की दया से मिलने, लोगों को गले लगाने, उन्हें ढूंढने और उन्हें बचाने वाले के रूप में यीशु से मिलने की ओर ले जाने का नजरिया भी बढ़ाया। उन्होंने इसे खजाना कहा जिसे अमोरिस लेतित्सिया ने कलीसिया के लिए लाया और कहा कि 10 साल बाद भी यह एक नया दस्तावेज है जिसे फिर से खोजने की जरूरत है। महाधर्मदक्ष सिख लूना ने जोर देकर कहा, मुझे लगता है कि एक ऐसी दुनिया में जो रोबोट, गुमनामी और अकेलेपन से आगे निकल रही है, परिवार की ना केवल समाज में बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी एक नबी की भूमिका है। आगे फादर जाकोमो कोस्ता ने प्रेस सम्मेलन की शुरुआत उस दिन की सभा के माहौल के बारे बताते हुए की जब पोप की सर्जरी के बाद उनके साथ आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की गई थी। उन्होंने पोप के भेजे गए पत्र पर प्रतिभागियों के आभारी होने के बारे में भी बताया। फादर ने सभा के कार्यों को अत्यधिक लेकिन रचनात्मक बताया, खासकर अलग अलग दृष्टिकोणों के आदान प्रदान में। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के अंतिम दो पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखता है। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है। जब शरीर को संभालने वाले हाथ बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं और चबाना मुश्किल हो जाता है, खिड़कियां यानी कि आंखें धुंधली हो जाती हैं, कान कमजोर पड़ जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है आदि आदि, यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है। वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। इस तथ्य पर भी हमने गौर किया था कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ नहीं कहता। फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सही नतीजे पर पहुंचता है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमा करते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होता है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और कहीं भी इतने अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और इस प्रकार यह उस भयानक भविष्य पर स्पष्ट रोशनी डालने का रास्ता खोलता है जो ख्रिस्ती सुसमाचार के खुलासे से मिलती है। फिर उक्त पदों में जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद करें। वस्तुतः चांदी और सोने की तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी, और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के अंतिम भाग यानी कि उपसंहार पर दृष्टिपात करें। उपसंहार इस ग्रंथ के 12वें अध्याय का ही एक प्रकार से विस्तार है। उपदेशक द्वारा यह जीवन का अंतिम विश्लेषण है। उपसंहार के पहले पद में ही उपदेशक अपनी शुरुआती बात पर लौट आता है और कहता है कि अनंत काल और अनंत परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ व्यर्थ है। जीवन की निरर्थकता को परखने के बाद वह कहता है कि जीवन न केवल निरर्थक है बल्कि निरर्थकता की पराकाष्ठा है। सब कुछ असार है, सब कुछ निस्सार है और थोता घमंड है। आइए मिलकर उपसंहार का पाठ करें। उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के 8 से लेकर 14 तक के पद इस प्रकार हैं। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक न केवल बुद्धिमान था बल्कि उसने जनता को प्रज्ञा की शिक्षा भी दी थी। उसने सोचने और परखने के बाद बहुत सी सूक्तियों का संकलन किया था। उसने सुंदर सूक्तियों को खोज निकाला था जिनका सही अर्थ यहां लिपिबद्ध किया गया है। ये शब्द प्रामाणिक है। फिर उपसंहार के 11 से लेकर 14 तक के पदों में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान के शब्द अंकुश जैसे हैं, उसकी सूक्तियों का संग्रह मजबूती से ठोकी गई कीलों जैसा है। ये सब एक ही चरवाहे की देन है। पुत्र सावधान रहो, उनमें कुछ नहीं जोड़ो। अनेक ग्रंथों के निर्माण का अंत नहीं होता और अधिक अध्ययन करने से शरीर थक जाता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। श्रोताओं, यहूदियों के नरसंहार से बचे विक्टर फ्रैंकल ने जीवन के अर्थ और बिना अर्थ के जिए गए जीवन की कीमत पर गहराई से विचार किया था। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में युद्ध के दौरान उनके अनुभवों और जीवन के बारे में उनकी समझ का जिक्र है। वे लिखते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद खोजने की कोशिश ही इंसान के भीतर सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। फ्रैंकल कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे होने का मकसद हम खुद नहीं बनाते बल्कि उसे खोजते हैं। वे कहते हैं, मैं अब उस भावना के नुकसानदेह असर की बात करता हूं जिसकी शिकायत आज बहुत से मरीज करते हैं, यानी अपनी जिंदगी के पूरी तरह और आखिरकार बेमतलब होने की भावना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जिंदगी में कोई ऐसा मकसद भी हो सकता है जिसके लिए जिया जाए। वे अपने अंदर के खालीपन के एहसास से परेशान रहते हैं। यह अस्तित्व का खालीपन, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं, मुख्य रूप से ऊब या बोरियत की हालत में दिखाई देता है। श्रोताओं, फ्रैंकल ईसाई नहीं थे और उनका यह विश्वास बिल्कुल नहीं था कि जिंदगी का एक ही मकसद हो सकता है। उनका मानना था कि हर इंसान का अपना मकसद होता है और यह पल पल बदल भी सकता है। उनके अनुसार जिंदगी का मकसद यानी कि उपदेश या लक्ष्य तीन तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, कोई काम करके, दूसरा किसी मूल्य को अनुभव करके और तीसरा दुख सहकर। श्रोताओं, इस प्रकार उपदेशक ग्रंथ का उपसंहार यह दर्शाता है कि उपदेशक भलीभांति समझ गया था कि ईश्वर के सत्य का प्रचार कैसे किया जाए, एक उपदेशक में कौन से गुण होने चाहिए, इसी का इन पदों में विश्लेषण है। और वह यह कि उपदेशक सत्य को अपने तक सीमित न रखे बल्कि उसका प्रचार प्रसार करे और इसके लिए सही और स्वीकार्य शब्द खोजने की कोशिश अनिवार्य है। उपदेशक को अपने शब्दों को पैने अंकुश और मजबूती से ठोकी गई कीलों जैसा बनाना चाहिए जिनमें सही दिशा और उपदेश हो।
उसे एक ही चरवाहे के सदृश ईश्वर के शब्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसे यह भी समझना चाहिए कि अच्छी तरह अध्ययन करने से शरीर थक जाता है और उसे वह कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि पोप लियो चौथवें की रोम के जेमेली अस्पताल में दूसरी रात अच्छी रही और उन्होंने उठकर नाश्ता किया। पोप लियो चौथवें की मंगलवार दोपहर को जेमेली अस्पताल में सर्जरी हुई थी, जिसके दौरान डॉक्टरों ने उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को हटा दिया, जैसा कि उसे शाम वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया था। ऑपरेशन के दौरान किए गए उत्तक की जांच से फेफड़े के कैंसर के निदान की पुष्टि हुई, जो पहले से किए गए परीक्षणों से संदिग्ध था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट तक चला और सब कुछ योजना अनुसार हुआ। 14 अक्टूबर की दोपहर को डॉक्टर लुइजी कार्बोन और जेमेली अस्पताल में थोरैसिक सर्जरी के प्रमुख प्रोफेसर स्टेफानो मार्गरेटोरा, जिन्होंने मेडिकल टीम के साथ ऑपरेशन किया था, पोप लियो चौदहवें के ऑपरेशन के बाद के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आज सुबह पोप ने सर्जरी के बाद तय ब्लड टेस्ट एवं चेस्ट का एक्सरे कराया। नतीजों से पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद उनके स्वास्थ्य में सामान्य सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, पोप की श्वसन फिजियोथेरापी हुई है और उन्होंने अपने कमरे में घूमना शुरू कर दिया है। वे सामान्य खाना ले रहे हैं और नाश्ता एवं दोपहर का भोजन किया। उनके स्वास्थ्य में सुधार उम्मीद के मुताबिक हो रही है। बाद में वैटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पत्रकारों को बताया कि संत पापा ने बुधवार दोपहर जेमेली अस्पताल की 10वीं मंजिल पर उनके लिए खास रूप से तैयार किए गए एक कमरे में पौत्र मिसा में भाग लिया। अमोरिस लेतित्सा के प्रकाशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सभा के समापन पर पोप लियो चौथवें ने कहा कि वे उनके कामों के परिणाम का अवलोकन करेंगे और उम्मीद जताई कि परिवार स्थानीय कलीसियाओं के जीवन और मिशन में हमेशा सक्रिय भाग लेंगे। पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतित्सा के प्रकाशन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सभा के समापन के लिए अपने संदेश में पोप लियो चौथवें ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन दिनों आपके बीच नहीं आ पाया। मैं आपकी प्रार्थनाओं और आपके साथ मिलकर किए गए कामों के लिए सहृदय शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके अनुभव को साझा करना और ध्यानपूर्वक सुनना सचमुच पूरी कलीसिया के लिए एक वरदान है। बुधवार सुबह कार्डिनल लुइस अंतोनो ताकले ने 7 से 14 अक्टूबर की सभा के समापन के लिए पोप लियो चौदहवें की ओर से क्रिस्तिया की अध्यक्षता की। कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल लुइस अंतोनो ताकले ने संत पापा के संदेश को प्रस्तुत किया। पोप ने अपने संदेश में उन परिवारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी खुशियों, मुश्किलों और

परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार करते रहें। पोप ने उम्मीद जताते हुए कहा, परिवार हमेशा अपने स्थानीय कलीसिया के जीवन एवं मिशन में हमेशा भाग लेते रहेंगे और वे आपको आगे के रास्ते समझने में मदद करेंगे। पोप ने सभा में भाग लेने वाले सभी लोगों को सलाह दी कि जब वे घर लौटें तो अपने समुदायों में सभी को पोप का आध्यात्मिक सामीप्य एवं प्रोत्साहन दें। पोप लियो ने अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देते हुए कहा, आप में से हर एक को नाजरेत के पौत्र परिवार की सुरक्षा में सौंपते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें जैसे मैं आपके लिए करता हूँ। कलीसिया ने अमोरिस लेतिस्या सभा के अंत में परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वैटिकन ने पोप लियो चौथवें द्वारा प्रेरितिक प्रबोधन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुलाई गई कलीसियाई सभा अमोरिस लेतिस्या के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार के समापन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग 14 अक्टूबर को समाप्त हुई। इस मीटिंग में कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुख, विवाहित दंपति और विशेषज्ञ एक साथ आए ताकि इस बात पर सोच विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों के साथ बेहतर तरीके से कैसे रह सकती है। महाधर्माध्यक्ष सिकलूना ने इस अनुभव के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे अगले दिन माल्टा लौटेंगे और वे इतने सारे धर्माध्यक्ष भाइयों, साथी परिवारों और लोक धर्मियों को सुनने के इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया जो इस मीटिंग के हिस्से थे। उन्होंने मीटिंग बुलाने के लिए पोप लियो को भी धन्यवाद दिया। माल्टा के महाधर्माध्यक्ष ने कहा, मैं इस सभा से जो लेकर जा रहा हूँ वह है कलीसिया के प्रेरितिक मिशन के केंद्र में परिवार को रखने का एक नया संकल्प। 10 साल पहले प्रकाशित प्रेरितिक प्रबोधन पर चिंतन करते हुए महाधर्माध्यक्ष सिकलूना ने कहा कि अमोरिस लेतिस्या ने प्रेरितिक बदलाव का निमंत्रण दिया है। परिवारों का न्याय करने से पहले उनकी बात सुनने और खुले हृदय से हालात को समझने का दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि इसने ईश्वर की इच्छा जानने के साथ साथ ईश्वर की दया से मिलने, लोगों को गले लगाने, उन्हें ढूंढने और उन्हें बचाने वाले के रूप में यीशु से मिलने की ओर ले जाने का नजरिया भी बढ़ाया। उन्होंने इसे खजाना कहा जिसे अमोरिस लेतिस्या ने कलीसिया के लिए लाया और कहा कि 10 साल बाद भी यह एक नया दस्तावेज है जिसे फिर से खोजने की जरूरत है। महाधर्माध्यक्ष सिकलूना ने जोर देकर कहा, मुझे लगता है कि एक ऐसी दुनिया में जो रोबोट, गुमनामी और अकेलेपन से आगे निकल रही है, परिवार की न केवल समाज में बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी एक नबी की भूमिका है। आगे फादर जाकोमो कोस्ता ने प्रेस सम्मेलन की शुरुआत उस दिन की सभा के माहौल के बारे बताते हुए की जब पोप की सर्जरी के बाद उनके साथ आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की गई थी। उन्होंने पोप के भेजे गए पत्र पर प्रतिभागियों के आभारी होने के बारे में भी बताया। फादर ने सभा के कार्यों को अत्यधिक लेकिन रचनात्मक बताया, खासकर अलग अलग दृष्टिकोणों के आदान प्रदान में। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।